0: ও দেখে কে টাউকো দেখনি কে পেট দেখনি কে দেখে আও দেখে আও জানি এই বেলা পখালা লাগে হইরান হইনে কাজ জানি হলা কে করি কে নগর্নি কইলেই বিরামী ভার কেই মিলো মিশে গাইলে
1: বুয়া চিড় নগর্নোস ঘটে সুভাষ মেডিকো ফার্মামা গই আলম এই বেশি সরক সেরা চোখ দেখি কারাগার জানে বাদ শনি তিন জাম বরু
0: হুঞ্ছ বুয়ারি লো গই আলম সারে গারো
1: সুভাষ মেডিকো ফার্মা বেশি শহর নগরপালিকা আট সেরা
2: ইহা অনুভবী স্বাস্থ্য কর্মী দ্বারা স্বাস্থ্য পরীক্ষণ গর্নুকা সাথে উচিত পরামর্শ দিইন্ছ সবাই খালে ঔষধিমা বিশেষ ছুটকো ব্যবস্থা ছ প্রোপাইটার সুভাষ দনাই সম্পর্ক মোবাইল নম্বর 9845664093
3: কে তপাই ভরপর্দো আয়ুর্বেদ সেবাকো খোঁজিমা হুনুহুন্ছ এদি হুনুহুন্ছ ভনে চিতবনকো নমুনা আয়ুর্বেদ ঔষধালয় তপাইহরুকেই সেবামা সমর্পিত ছ यहाँ उच्च स्तरीय आयुर्वेदिक औषधिहरू उपलब्ध हुनुका साथै अन्य प्रविधिबाट ठीक नभएका नयाँ तथा पुराना रोगहरू बाघ दम ग्यास्ट्रिक अल्सर क्यान्सर धातु किनास जन्डिस पाल्स पत्थरी फिस्टुला प्यारालाइसिस मधुमेह जाँडरक्सी छुटाउने औषधि मोटोपन घटाउने बढाउने ब्लड प्रेसर यौन रोग छातीको दाग आदिको सफल उपचार गरिन्छ दैनिक दक्ष तथा अनुभवी विशेषज्ञ स्वास्थ्य परीक्षण गरिन्छ थप जानकारीका लागि सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9841 39 6 47 र 9811 90 6 10 नमुना आयुर्वेद औषधालय राप्ती नगरपालिका 5 भण्डारा स्कुल रोड चितवन र भरतपुर महानगरपालिका 12 मालपोत कस्तुरी टोल चितवन
4: हार्दिक निमन्त्रणा हार्दिक निमन्त्रणा हामी सबैको चाहना विश्व शान्तिको कामना भन्ने मूल नाराका साथ साम्बा चोलिङ बुद्ध गुम्बाको प्राङ्गणमा गुम्बा समिति तथा न्युन्ने समूहको सक्रियतामा घन पोखरा लामा परिवारद्वारा त्रिदिवसीय न्युन्ने मौन व्रत तथा पितृ उद्धार कार्यक्रम महापूजा आयोजना हुन गइरहेको छ। उक्त महापूजामा सहभागी भई पुण्य लाभ प्राप्त गर्न सम्पूर्ण जिल्लावासी श्रद्धालु भक्तजन जनप्रतिनिधि बुद्धिजीवी शुभचिन्तक तथा गाउँवासी बुवा आमा दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरूमा उपस्थितिका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौ। मौन व्रत तथा पितृ उद्धार कार्यक्रम महापूजा निम्न मिति समय र स्थानमा सञ्चालन हुने बेवरा जानकारी गराउँदै यहाँहरू सबैलाई हार्दिक निमन्त्रणा गर्दछौ।
1: मिति 2083 कार्तिक 7 गतेदेखि 9 गतेसम्म समय बिहान 10 बजेदेखि स्थान साम्ब छ्योलिङ बौद्ध गुम्बा मर्चङ्गी गाउँपालिका 1 र 2 पोचोको घन पोखरा लम्सु आयोजक घन पोखरा गुम्बा लामा परिवार घन पोखरा लम्सु थप जानकारीका लागि सम्पर्क गुम्बा समिति अध्यक्ष राम गुरुङ 9841064454 घन पोखरा लामा परिवार अध्यक्ष डम्बर गुरुङ कर्म 9846556604
5: नोट मौन व्रत बस्न चाहनुहुने श्रद्धालु महानुभावहरूका लागि विशेष जानकारी मौन व्रत बस्न इच्छुक श्रद्धालुहरूले कार्तिक 6 गते बेलुकासम्म गुम्बामा आइपुग्नु पर्नेछ।
1: कार्यक्रमको समय तालिका यस प्रकार रहेको छ। कार्तिक 6 गते बेलुकासम्म गुम्बामा उपस्थित भइसक्नु पर्ने, कार्तिक 7 गते बिहान 5 बजे शील ग्रहण गर्ने, कार्तिक 8 गते बिहान 5:30 बजे शील ग्रहण गर्ने, कार्तिक 9 गते बिहान 3 बजेदेखि पूजा शुरू भए सोही दिन कार्यक्रम समापन हुने जानकारी गराउँदै उक्त मौन व्रतमा सहभागी हुन इच्छुक सम्पूर्ण श्रद्धालु महानुभावहरूलाई निर्धारित समयमै उपस्थित भई पुण्य लाभ लिनुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौं।